काले खरना कबीरा तूर सकेल के पुड़िया बांधी दे दिल सो चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए पाए बला।

चले चल हार बिचारा ले मनो चले चलन हार बिचारा ले मनो गंढेंदिया छे मार तोड़ेंदिया किखिनो जिमें पुछे आसमान हरिदा केवट किन गए

छिल छिल और देहात है, फूटे कर जो पानी सो दिन आवन लागा, सो दिन आवन लागा। मात पिता पाई सुत बनता, कहां को है कांका।

आऊं जानी जियो तलो ब्योहार है जको तू जानो जियो तलो ब्योहार है जको तू जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुख समाने हर गुण गाओ मना सतगुरु सेव प्यार

तरत आकाश पताल है चंद्र विनाशी पाशाह उमराव खान टाए डेरे जासी रंग तरंग करीब मस्त

एक शायर ने बड़ी सुंदर बात आखी है। ओ आंदे ने सरे जलसा गोविंद ने तकरीर फरमाई, ये वो एक तकरीर थी जिसमें इनकलाबों की थी अंगड़ाई। गुरुजी ने कहा है दे गुलामी रह नहीं सकता, मुजालम के थपेड़े ये वतन अब सह नहीं सकता। यहाँ है जात के झगड़े, यहाँ मजहब के झगड़े हैं, ये सब मतलब की बातें हैं, ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पर उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो शहादत के लिए उन

सत्संग मिले सो तरिया। मेरे माधव जी सत्संग मिले सो तरिया, गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का कबा।

मेरे माधो जी। सत्संग तुम मिले सो तरिया, सत्संग तुम मिले सो दरिया, साध संगत हुई निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत।

सत्संगत कैसी जानी है। केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो दी संगत। सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम विखानी है। ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने, ओ साध संगत। साध संगत मिल होए तराबा, ते संगत करन दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी। बिसर गई सब तात पराई, इंसान कितनी भी कोशिश करे तात पराई नहीं छड़ सकता। तात पराई दा पाव है जलन, ईरखा, किसे नू वेख के जलना। तात पराई नहीं छड़दा, पर सैम आख देने जीव जदो संगत विच आ जाता है ना सब कुछ छड़ जाता। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। कितना संगत विच आउन दा लाभ है, जब संगत विच आउन है तात पराई भुल जांदी। इथे ही बस नहीं, ना को बैरी नहीं बिगाना, वैरी भी सज्जन नजर आने लग पैंदा, दुश्मन भी मित्र लग पैंदा, क्योंकि संगत विच आ गए। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बने आई। ये प्राप्त किवें होया,

आप जी ने बड़े प्यार दे नाल शरण कीता है। सिंह यूथ वाले सिंह पहुंचे ने तो साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी की बाणी दे नाल तो सारयां दा प्यार है, पर इन्हां दा कुछ ज्यादा ही है। इस वास्ते इन्हां ने हुक्म कीता है कि तुसी जरूर ही साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी तराना अखीर ते समाप्ति जड़ी है वह साहिब गुरु गोबिंद सिंह की बाणी दे नाल ही करनी है। साडे मन विच ख्याल जरूर सी कि सतगुरां पातशाह जी का जो तराने हन जां गुलदस्ते आप जी ने अगे कई बार सरवण किया है तो सतसनी तराने दे नाल समाप्ति करांगे। आओ एक प्रार्थना रचना होर है जो आड़ा चुताला दी है, आओ वो आप जी बड़े प्यार नाल सरवण करो। शब्द कबीर साहब जी का है, आप जी नूं बंदिश का आनंद जरूर आएगा। इस राग का नाम लच्छा प्रदीप की राग है जो बड़ा ही पुरातन बड़ा ही पुराना राग है, तो पुरातन बंदिश है। बड़े प्यार नाल सरवण करो।

अब मुहे नाच नो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। ये पावन शब्द सरवण कीता है। आओ एक जो के ज्ञानी ज्ञान सिंह अलमस साहब जी दी बहुत ही सुंदर रचना जो आप जी ने पंथ विच बहुत ही गायन कीती है, जो उन्हां दी सब तो पहली हरमन प्यारी जिथे भी कीर्तन करदे सन वो रचना संगत विच जरूर सुनाउंदे सन, ते बड़ी कठिन है। आप जी उहदी लिखतकारी ते बंदिश दी बनावट आओ अड़ाना बहार दी बंदिश है श्रवण करनी कि किस तरह धूम परी जगत में तुमरी। ए आम नहीं किते भी गाई, पहली बारी जा किते किते इस बंदिश असां ने गाई है, तो ध्यान देना ए दी रचना पहला आप श्रवण करो बोल जो बड़े औखे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की शिफत की है, ध्यान देना ब्रिज भाषा की ते संस्कृत की चीज है, ध्यान देना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो। इसनू उन्होंने कंपोजिशन बनया है, ध्यान देना। इस चीज नू इन्नी औखी पढ़न विच औखी है, पर इसनू उन्होंने बंदिश का स्वरूप दिता है, बड़ा आनंददायक चीज है, ध्यान श्रवण करना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो, कंप्यो तरणी तर, कंप्यो तरणी तर धरती कंब गई, कंप्यो तरणी तर थारा रारा रारा कर इंद्रपुरी, धूम परी जगत में तुमरी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी आनंदपुर विच जय जयकार हो रही है, सारे पासे धुम पै गई, ते इंद्र दा दरबार ते वड्डे वड्डे भीम जिहड़े द्वापर युग दे विच बड़े बड़े बली सन वह भी कंब गए, गदातार वड्डे वड्डे भीम वर्गे अर्जुन वर्गे सारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शिफत सलाहन देख के उपरों धरती कंबण लग पी, आकाश कंबण लग पिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इन्नी चढ़त है। तो अगला पहरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। तीर पातशाह किस तरह चलते ने, शाना नाना नाना नाना शनक शोमकार, शाना नाना नाना नाना शनक शोमकार, छडत तीर कलगी तर, शाना नाना नाना नाना शनक शोमकार, छडत तीर कलगी तर, सरा रारा सर के जावत तीर, सरा रारा सर के जावत तीर, छतियां चीर दुष्ट सबन के तरफ तरफ निकसे प्राण, धागे रघुवीर महावीर रण तीर की गिरत पगरी, धूम परी जगत में तुमरी। तीसरा पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपकत बर महा जोध दुष्ट दमन करे। चक्र न्यांग सिंह धमाले ते चक्र पाउंदे हन, ते जदों रण मैदान च लोड़ पैंदी है शास्त्रां दी, ते जदों ओ आखरी शास्त्र धमाले तो ला के ते चक्कर मार के सिर ला दिंदे सन। चक्र चलत खंड खंड चक्कर चल रहे ने, चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपकत बर महा जुद्ध दुष्ट दमन करे, गंधर्व अलमस्त के प्रभु की जग धूम परी, डरत पई शिवपुरी पेख आनंदपुरी। ब्रह्मपुरी शिवपुरी इंद्रपुरी सारे देवत्यां दी पुरियां हैरान हो गईयां ते डरन लग पईयां आनंदपुरी नूं देख के, ते ओ ए रचना बड़े आनंद दे नाल प्यार दे नाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस्तत अलमस साहब जी दी रचना।

मन विच हुणे विचार याद आई कि कुछ थोड़ा जिहा इहदे विच लाइट ठुमरी दे विच हो जांदा है, दिल कीता कि कुछ स्वर ऐसे जां ऐसे अंग ला दईए जिहड़ा मन साडा भी राजी होवे। इस वास्ते आओ, कई प्रेमी बैठे भी ने जिहड़े सुनना चाहुंदे ने,

जी गुरु जी बड़े मर्दे मर्द खुदा थे, बड़े आवदो जाहदो पार सा थे, गनी थे नबी थे, बड़े मुकदा थे गाजी थे, दलावर थे वो खैरे शफा थे, करवाने की मर्ज की वो आले दवा थे, देखने के गुरु गोविंद सिंह थे लेकिन जाहरे खुदा थे। तन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाहरे खुदा, ना सरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे विच सारे गुण सन। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, नैण तो नशीले, सतगुरु पातशाह जी दे नैण तो नशीले मसतीले दऊ जादू परे, नैण तो नशीले मसतीले दऊ जादू परे, तनक निहार सब सुरत पलात है, तनक मात्र तनक निहार सब सुरत पलात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ, भक्ति और वीरता की गर्दन चुकात है, फतेह चाड़े आंगन और लक्ष्मी दबाए पग, गोविंद मरगिंद गुर जीते नहीं जात है। धन गुरु गोविंद साहब मरगिंद की तरह शेर की तरह सतगुरु पातशाह जी कदी भी रण मैदान में हारे नहीं है, सतगुरु पातशाह हमेशा जित हुए। तो सतसंगत जी औरंगजेब का ऐलान होया कि मेरे कन्ना विच इन्हां सिखां दी ढोलकी ते चिमटे की आवाज, ते ये जिहड़े सति श्री अकाल दे जकारे छड़दे ने इन्हां नूं जरा चेतावनी कर दिओ, अपने सिपाहियां नूं कह दिता कि दस दिओ कि मेरे कन्ना विच ये ढोलकी चिमटे की आवाज ना पवे, मेरे कन्ना विच ये जिहड़े जकारे छड़दे ने सति श्री अकाल दे इन्हां दी आवाज ना पवे। तो कुछ मसंदा ने आके सतगुरु पातशाह चरणा ते बेनती की, महाराज बड़ी डर वाली गल है, बड़ा एक अनोखा चैलेंज औरंगजेब का होया है, सतगुर आपां लड़ाई झगड़े विचों की लैना है, ते कृपा करो कि आपां एक भोरा पुट लईए, आप जी नूं असीं मशवरा देंदे हां। सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे सतगुरु पातशाह जी, ध्यान देना, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे, कहिंदे सतगुरु पातशाह जी गरीब नवाज जी ये कृपा करो कि आपां एक भोरा पुट लईए, उस भोरे विच बैठ के आपां आस्ता आस्ता हौली हौली पाठ करा करांगे, आस्ता आस्ता बाणी पढ़ लिया करांगे, ते हौली हौली ढोलकी बजाया करांगे, ते उत्थे जकारे छड़ लिया करांगे भोरे विच ही बैठ के, ते आपां की लैणा है लड़ाई झगड़े चो। ते सतगुरु पातशाह जी हस पे, कहिंदे ने तुसां ते इह मन विच ठान लई है, मन विच विचार कर लई है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे मन विच जो फुरना है वह भी जरा शरवण करो। सतगुरु पातशाह कहिंदे उन्हें यह ऐलान कर दिता है कि मेरे कन्ना विच ढोलकी दी आवाज ना पवे, नगारा मर दिओ। सतगुरु पातशाह कहिंदे नगारे ते चोट मारो, नगारे ते चोटा वजन, ते सिंह चढ़दी कला विच जकारे छड्डण। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तुसीं भोरे दी गल करदे हो, असीं कहिंदे हां खालसे दा जिहड़ा निशान है उच्ची पहाड़ी ते चुल्ले, दूरों दूरों पता लगे कि आनंदपुर साहब दा यह लोहगढ़ दा किला है, यह आनंदपुर साहब की पावन धरती है, गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान हैं। तो सात संगत जी सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरसिखो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे आ बोल नगारे ते वजने चाहिए ने, यह जिहड़े बोल है धमाकेदार जोरदार वजनदार शक्तिशाली, ये जदों वजणगे नगारे ते देखो फिर उहदे कन्नां विच जदों गूंजा पैणगे तां पता लगेगा। तो सत श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी इन्ने अणख, सतगुरु पातशाह जी इन्नी जुरत, इन्नी शक्तिशाली वीरता दे पुंज सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी तो उचारण कर रहे तराना सत्यान देना। दागड़ दी धर्म दिगतांग दागड़ दी धिम धरना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, बागड़ दी बरिकते बांग तागड़ दी तोम तोम तरना, तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना। अखीर ते सतगुरु पातशाह कहिंदे धीम ते धरना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵੀਣਾ ਤੇ ਸਤਾਰ ਦੇ ਬੋਲ।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने। तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पे खारी जियो मैं क्या मांगू किच थिर न रहाई। तू दाता है तेरे कोल सारियां दाता ने तू दाता दा मुजस्मा है पर सोचना ता मैं है पई मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे।

कट कट रव रहा बनवारी। कहंदे ने दुनिया दे मुसलमान काबे दी जियारत करन तुरे जा रहे सन, ओदां दे कपड़े पहने हुए। कबीर जी कहंदे ने मैं भी तुर पिया भई शायद परमात्मा रब उथे मिल जावे। कबीर हज काबे हों जाए था, कहंदे ने अगे मैनू खुदा मिल पिया ते खुदा ने मेरे नाल झगड़ा कीता। कहन लगे कबीर किथे चले है? मैं क्या मालिक मैं तां तैनू मिलन चलिया। तां कहंदे ने नाराज हो गए मेरे नाल झगड़ा कीता भई लोगां दी तां मत मारी गई है तेरी भी मारी।

ब्रह्मा एदियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पाती बिशन डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे भोलेनाथ शंकर

एक गल याद रखियो, गुरु ते उहदे दरगाही प्यारे इह धुर तों ही ड्यूटी लगी हुई। प्रोग्राम बनिया हुंदा धुर तों, संसार ते कीड़ी ड्यूटी जाके देनी है। ये ड्यूटी सी, तू दो तो एक बना रहे हैं, दो तो तीन बनने, क्यों तीसर पंथ चलाई हैं, वड़ सूर गए। सारे बोलो वाह वाह गोविंद सिंह आपे। ये प्रोग्राम नूं कोई साढ़े वर्गी मत क्या जाने,

अरदास करो एक ओ वल रख जिस दे होवे वल सो कदे ना जम गुरु होए वल लख पाए क्या की आजे तू वल नहीं ते फिर कुछ भी नहीं कले मां सिंह नाली वापरी जड़ी घर का नक्शा एक मिनट सुनिया जे ये चालिया नाल ही वापरिया कहिंदे अगले दिन गुरुद्वारे चाली दे चाली कट्ठे होए ते हर कोई अपनी गल दस रहा कि मेरे परिवार ने मेरे नाल की कीती सारिआं नूं महसूस हो रहा कहिंदे जदों गुरुद्वारे कट्ठे होए ते साध संगत उस वेले कथा भी इहो चल रही सी कि छे तरह की हत्या है ध्यान ये कुदरती गल तकरीबन अंदर की गल का जवाब संगत जो मिल जाता कि चाली दे चाली गुरुद्वारे कट्ठे होए ते साध संगत जी उस वेले कहिंदे जिहड़े भाई साहब कथा कर रहे सी गुरुद्वारे ओ प्रसंग भी इहो चल रहा है कि पाप ते कई तरह दे ने ते छे तरह दी हत्या है पापी बहु प्रकार के उत्तम मध्यम ज्ञान हत्या छे प्रकार दी मन में लियो पछाण वो छे प्रकार दी हत्या शास्त्रां च लिखी है गऊं ब्राह्मण मारीए गोत्री हथ कराए ऋण हत्या कन्या हत्या विश्वास घात अधकाए ध्यान दे अच्छे हत्या ने गऊं ब्राह्मण मारीए गऊं नूं मारना भी हत्या गिणीए ते जेड़ा सही सच्चा सच्चा ब्राह्मण है प्यो उन्हों भी मारना हत्या गिणी गोत्री हथ कराए गोत्री कहिंदे अपने कुल चों किसे दा घात करना उह भी हत्या अगे चौथी हत्या लिखी है ऋण हत्या होंदी है भी किसे दा कर्जा चुक के ते फिर कोशिश करनी भी ये वापस ना करिए उहदा किसे तरीके बुरा हो जाए ऋण हत्या कन्या हत्या लड़की नूं मारना पहले 96 करोड़ पाप ते एक हत्या बराबर है ते फिर की आखिया है आ जड़ी गलती भाई मान सिंह को हुई ते दूजिया को हुई वो केड़ी हत्या एदे च आई नहीं कहिंदे उस वेले कथा हो रही सी कि आ छे हत्या ने ते एक हत्या 96 करोड़ पाप वर्गी है ते फिर अगां की चलिया प्रकरण कोट 96 पाप सम हत्या एक कहाए 96 करोड़ कोट 96 पाप सम हत्या एक कराए कहिंदे खट हत्या के तुल खट कहिंदे 6 नूं खट हत्या के तुल कहिंदे 6 हत्या दे तुल एक हत्या बराबर जे गुरु तो सिख फिर जाए आखो सतनाम खट हत्या के तुल जो गुरु ते सिख फिर जाए आ गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति जरा पढ़ लो

सलाह करते पे ने करिए की ते माई भागो आ गए कहते उदास क्यों आ गलती कर बैठे हैं हूं सोचते हैं बख्शी किवें जाए। माता भागो कहती हूं ते बख्शी जाएगी सिर दे के आखो सतना

छोटे छोटे पीस जिहड़े हैगे उह शस्त्रां दे चाल दिखांदे आ। असीं शस्त्र दे पूजे कर रहे हां हुणे। इह शस्त्र नाम माला है। असीं शस्त्रां दे गिणदे आ, उहदे नमस्कार करदे आ। यही हमारा पीर। बस माफ करना कि मैं शब्द रोक लिया, पर मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा जिहड़ा आनंद सानू आ रहा सी रियाज दे विच, थोड़ा तुहानू पता।

इस पावन पवित्र शब्द अंदर साहब श्री गुरु नानक पातशाह मन नूं संबोधन करदे होए सानू कलयुगी जीवां नूं उपदेश देंदे ने। एक चेतावनी एक चेतना देंदे ने, हे पुल्ले मनुख, जिस दी चेतना जिस दी आराधना करन वास्ते तेनू संसार विच भेजे है तो उसनू क्यों भुला दिता है। पर अज दा मनुख ए गल मनन नू तैयार नहीं कि मैनू कुछ भुल गया है। कहिंदा है मैनू सब कुछ चेते है, मैनू सब कुछ याद है। साहब कहिंदे ने नहीं, एक गल तू भुल गया है, मैं तेनू चेता कराना चाहना। मन एक न चेतस मूड मन, मूड कहिंदे ने मुगद मूर्ख मन नू। हे मूर्ख मन, तू एक परमात्मा नू चेतदा नहीं, ओदी आराधना नहीं करदा। याद रखी, मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जे तू हरि वाहिगुरु नू विसार देवेंगा तेरे अंदर दे गुण एक एक करके सारे गल जानगे, सारे सड़ जानगे, मुक जानगे। इसलिए तू परमात्मा नू चेते करिया कर।

आप श्रवण कर रहे सो कि धन गुरु नानक पातशाह नु जिस वेले पांधे ने पढ़ाया गुरु नानक ने पढ़िया लेखा समझाया पर गुरु नानक ने जिस लेखे दी गल कीती हुण पांधा हैरान हो गया कहन लगा पातशाह मैं ते सवाए पौण डेढ़ जा जमीन जा लकड़ दे साब लेखे नू केवल जानना इस तो सवा मैनू होर लेखा कोई नहीं आउंदा। बाबा जी कहन लगे पंडित जी ए लेखा इत्थे ही रह जाना है मैं उस लेखे दी गल करना जेड़ा लेखा साडे नाल जाना है। बाबा ए

लेखा लिख जान, ओ लेखा लिख जिड़ा तेरे नाल जाना है। फिर कहिंदी ने इथे पांधा जी ने गुरु नानक नू पूर्ण शक्ति मन के कुछ सवाल कीते। कह लगे बाबा जी हुण ए दसो कि मौत ज्ञानी दी भी हुंदी है ते मौत अज्ञानी दी भी हुंदी है, दोनों मरदे ने। सतगुरु कहन लगे पंडित जी इस गल दी विचार ना करो, मौत वाकई ही दोनों दी हुंदी है, लेकिन अज्ञानी दी मौत ऐसी है जिदी मौत दे अंदर शौक चिंता वाशनामा ते कुकर्म लैके मरदा है, ते ज्ञानी जिसनू जम दा डर नहीं हुंदा, परमात्मा नू अंग संग जानदा है, उहदे रंग विच सदा खुश रहिंदा है, ते जिस वेले ओ मरदा है उहनू दरगाह विच मान ते वड्याई हासिल हुंदी है। पातशाह ज्ञानी ते अज्ञानी विच अंतर की है? कहिंदे ने अज्ञानी जो परमात्मा नू भुल जांदा है, परमात्मा दा चेतन नहीं करदा, ते ज्ञानी जिहड़ा परमात्मा नू याद रखदा है, परमात्मा नू हर दम

जो ब्रह्म दी विचार करता है, जो परमात्मा नु भुलदा नहीं बल्कि परमात्मा नु चेते रखदा है, आप भी चेते करदा है ते होरना नु भी चेते करांदा है, भुले भटकियां नु परमात्मा नाल जोड़दा है, ओनु कहिंदे ने ज्ञानी। पांदा ए गल्लां सुन के गुरु नानक दे चरणा ते मत्था टेक के बारंबार अपनी भुलां बख्शाण लगा, नानक जी मैनू बख्श दियो, मैं अनजाने विच हो सकदा तानु वाद काट कह गया हां, इसलिए मेरी भुल बख्श दियो। जिस वेले कहिंदे ने महता कालू जी नानक जी नु लैण आए, ते कालू जी कहन लगे पांदा जी मेरे पुत्र नु बड़े प्यार नाल पढ़ाना, जितनी जल्दी ए पढ़ाई पूर्ण करेगा मैं उतनी वड़ तुहाडी सेवा करांगा। हुण पांदा हथ बन के खड़ा हो गया ते कहन लगा कालू जी इस अपने पुत्र नु पुत्र ना जानो, ए ते कोई परमेश्वर है। पांदे ने ए हथ बन के बेनती कीती ते कहन लगे महाराज इन्हां नूं ते ओ पढ़ाए जिहड़ा इन्हां नालों वध पढ़िया होवे। कहन लगे मेरी निगाह दे विच इस संसार विच इन्हां नूं पढ़ाण वाला कोई नहीं है, ए ते संसार नूं पढ़ाण विच आप समर्थ हन। कालू जी ए साडे कोल पढ़न नहीं आए बल्कि सानूं पढ़ाण आए ने, ए ते आप बहुत विद्वान हन। ए गल्लां सुन के कालू जी बड़े प्रसन्न चित होए ते खुशी नाल नानक जी दी उंगल फड़ के अज घर नूं तुर पै ते सतगुरु गुरु नानक पातशाह साडे लई उपदेश की करदे ने, आओ इक मरतबा सारे आखो।

इस मूर्ख मन नु गुरु नानक पातशाह ने बारंबार समझाया, बारंबार उपदेश दिता है, ते उपदेश देंदे होए सतगुरु जी ए सानू गल समझांदे ने। सो साध संगत आओ, जे किते मन समझदा है

चेताई ता चेत मन एक न चेत सुमूड मना अवर पंच हम एक जना। हे परमात्मा ओ पंज मैं कल्ला मन दी गल पैसो कि घरां विच चोरियां बहुत होण लग पईआं ने। क्यों हुंदीआं ने? क्योंकि जो घर का मालक ही अवेसला हो जाए, जो घर का मालक ही सौं जाए चोरी ते आपे होनी। जो घर का मालक जागण लग पवे फिर चोरी नहीं हुंदी। साहब कहिंदे ने आ वी घर है, तन एक घर है, ते घर दे अंदर वेखो ये चोर बाहरों नहीं जे आउंदे, ये चोर अंदरों ही तैयार हो जांदे। ते चोर भी एक नहीं पंज ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पंज चोर नितां प्रति मारदे ने लुटदे ने। मारे लुटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना, मैं पुकार किदे अगे करा, श्री राम नामा उचरमण। हे मेरे मन तो राम दा नाम उचारण कर, आगे जम दल बिखम कणा, अगे दा रस्ता बड़ा औखाई, जे उस रस्ते चलना है ते परमात्मा नु चेते कर, परमात्मा नु याद कर। परमात्मा नु याद रखेगा ता किते जाके तेरी परमात्मा दे नाल बन आवेगी। सो ए बारंबार सतगुरु पातशाह सानू समझांदे।

वनस्पतमौली गरियाबल हे मन मोलिया कुम थो मुगल मना पाओ मेरे मना इस मन मौलिया मन पया अमृत फल पाया हे कोई सब आकम बुझे हुकम बुझे कैन को न कैन कोई। Yeah, man.

सच्चे सतगुरु दा उपदेश है, हरि दे नाम दा सिमरन करना ते हरि दे नाम नू अपने हिरदे विच दृढ़ करना। उठ दे, बैठ दे, सौं दे, जाग दे, अठे पहर प्रभु दी याद दे विच मगन रहना, ये हरि दा नाम ही है जो गुरसिख नू लोक ते परलोक विच सहाई हुंदा है अते मन बांछत फल दिंदा है। साहिब फरमाउंदे हन, सुन उपदेश हिरदय बसावै, मन इच्छे नानक फल पावे। सतगुरु जी दा उपदेश सिख नू समझांदा रहिंदा है कि सदा प्रभु दी शरण विच रहो, क्योंकि प्रभु दी शरण तो बिना होर किसे दी भी शरण बिरथी है। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बहुड़ न तृष्णा लागे आए। सदा ते संग चलन वाला साथी सिर्फ प्रभु दा नाम ही है। साहिब बाणी द्वारा गुरु तेग बहादुर पातशाह समझांदे हन, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो। गुरुदेव कहंदे हन कि समा बीतदा जा रहा है, मेरा कहा मन ते हरी जस करके अपना जीवन सफला कर लै। अवसर बीतो जात है, कहो मान लै मेरो।